एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी के पातशाही दसवे प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठ सब दुख जाय। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता। तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवा। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंड बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार। ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो। तख्त बाहे तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक। दिच्चे पूरब देवना जिस दी वास्त तिसे कर आवे। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावा। पूरन ताल खटाया अमृत सार विच जोत जगावा। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोडी सुल्तान पिता
ਸੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਸਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਪੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ

0: कहै त बांडे कत नाय टूटे ना मन लगे नाय जले ना जाय धन सुमान स्नान कर जोगड़ चले पाए चौकड़ मोलनाया बे चौके पाया सिखा कंचड़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख

0: गौ ब्राह्मण को करावो गोबर तर न जाय। तो ती टिक्का तह जप माली तान मिले शाखाई, अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई। छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करहनवा छुरी वगाए तन गलता, तिन घर ब्राह्मण पुरह नाथ ओ ना पहयावे ओई साथ। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करह आहार।

0: आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाये चुले रैन चढ़े एक ने हाली पैसवन एक ऊपर रैन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
1: आपे सज करे आप जाई पे रखे आप

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमित ओज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिजै तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख सफारी कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सो दम अपदा ते राखे गान का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो पर सन कल जुग होए राखो हो दास पाठ की लाज ताखत राजा सो बह जे ताखत लायक होई जिनी सच पछाणिया सच राजे सेई ताखत बह ताखत की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादि है पी होसी सहसा परम चुकाया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया ज्यों जन हो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गण असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद

बिखड़े प्रभ नेरहु ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारुहु काड पव जल फिरिया। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारावार। हर किरपा करके बख्श लै हो हों पापी बड़ गुन है गार। दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत।

रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वस तेरा घर भला। तेरे घर आनंद वधाई, तुद घर माण महत्ता, तेज अपना आप जर।

0: जियो, सब किस जान ला, सब किस तेरा बस, तेरा कर पला, तेरे कर आनंद वधाई तुद खार, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला पर पूर दिस जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तत् महत, दिसुरा दुदाई दाया खेला सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाच धर्म हजूर करमियां।

आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बेडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुगम है सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ते आया जी, जन नानक तिन वल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करहे हर पूजा जी, तप तप है जपहे बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडे अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हाँ पाई। रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लद्धा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल। जिसना तू जाना एह, सोई जन जाना। हर गुण सद ही आख वखाणा, जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ा पहिले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाला। हम देखा तह डूबी अले,

मान एक ना चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्रापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन का जन्म वृथा जात रंग माया का रहा जा।

ब्रह्मा शरण परे की राखहु, जाप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जाने हर राया, कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखहु शरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ द रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मान रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु, आप हाथ द मोहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिखियो सबै करतारा, मोर अच्छा निज कार दै करिया, सब बैरन का आज संगरिया, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखियो हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास ने वरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जजू करियो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पाल मो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सबहू, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद आर्यालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महा मूड़ काछ पेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव,
ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹੋ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠ ਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਧੋਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹੋਇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹ ਹਰ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛੁਐ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ। सब तो बखा।

जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जान केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे कान हर बूंद बसौरो मावल कुसम बसंत गणंत नायाव राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवै सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने तखत बह तखत की लायक पंच समाए गुरमत पायक धन धन रामदास गोर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कार नमस्कारिया एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम आपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते साहु सिर साहां दें जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सजन सच्चा पाते साहु सिर साहां दें

जन्म जन्म के लागे बेख मोरचा, लग संगत साध सवारे, ज्यो कंचन बैसंतर तायो, माल काटे कटित उतारे, हर हर जपन जपाओ दिन राते, जप हर हर हर उर तारे, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारे, हर हर आगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारे, जान कौ कृपा करहु जग जीवन,

अपरंपर परख अपारे जानकाओ कृपा करहो जग जीवन जान नानक पैज सवारे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अमृत शौड भिख भिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सुकह टल गुर सेवियन अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जा हो सिफत खसम दी नूर और सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा काल युग का धर्म कहो तुम पाई केव छूट है हम छोट काकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपियो तारा तारा की कल युग का धर्म कहो तुम पाई केव छूट है हम छोट काकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपियो तरह तरह की हर जी

हम मांगे भगत एकाकी हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर वचन की लेखा चित्र गुपत जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की लग संगत साध जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी सेव चर्यो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कौ प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आपे अपाकी जन नानक कौ प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे सरण नानक पुरख अचत है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखण हार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला।

से अनेक बाबा जयकार करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसिया कड़िया पहरा तिती वारी माहो हो आ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के ते वेस राग तना श्री महला पहला गगन मैथाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्या नलो पवन चवरो करे सागल बान राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत फेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानण सब में चानण होए गोर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारिंग कहो होए जाते तेरे नाई वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हौमें कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भाव खंडा हे अवनासी पुरख पाया परमेसर बहु सो बखंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हर लाह अग बसन सोहेला औद कट दिन सरहना रे मान गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार बिकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तन जानी जा को आए सोई बिहज हो हर गुरत मन है बसेरा निज घर महल पावह सुख सहजे बहोर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोका कर संतन की।

कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

0: विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नागे फरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग समाद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिपत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजण पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत

संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हुए खार कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरया करतार किस नाल की चै दोस्त।

0: सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटाखिन। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निध पावे। सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरहो।
1: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़।

भूले सोते दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते हे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गोरे रामदास राख।

0: राखू सरना।
1: सुख टल गुर सेवी एहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सच्चा